धन गुरु अर्जुन देव महाराज दिन राती आराधा प्यारो निमख ना कीजे ढीला और ए भी गुजरी राग और गुजरी राग भी तुम्हार है।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए वेखी कितने बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदे, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदे। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

कर्मी सहज ना उपजे सहज सहसा न जाए कर्मी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमार सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए कित संजम तोता जाए मन तो

प्यार पिता देवेगा पड़ोसी नहीं दे सकता। जो स्वाद अंब विचों आवेगा अंबली विचों नहीं। ऐ गुरु के सिख जो उपकार तेरे ते गुरु कर सकदा है संसार दा होर कोई जीव मात्र नहीं कर सकदा। ना मां ना बाप ना भैन ना भरा ना कोई रिश्तेदार। गुरु दा उपकार बहुत वड्डा है। भाई साहब कहंदे ने सारा संसार ढूंढ के आ लेंदे तो लेके चढ़दे तो लेके लेंदे तक नवा खंडा विच घूम के आ गुरु वर्गा।

को हर प्रभु मन चित आव। निरपव हो रहे विवेक जिसको हर प्रभु मन चित आव, तो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस पर अपना कृपा करे, जिस पर अपना

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

संत बाबा तस्वीर महापुरुष मस्तुआने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां करो अठ घंटे काम करना पड़ेगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई जितना काम अठां घंटिया विच करना सी चौं घंटिया विच कर दिता एक बारी प्यार नाल बोलिए ठेकेदार ने बुला के आख्या ए फड़ो पैसे ते जाओ कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा फिर दुगनी मजूरी देन लगा कहन लगे नहीं जो वचन होया है ओ ही लवां कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं ऐसे बंदे ता मिले नहीं खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घ्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकन दा आनंद आ गया कल आपां भी चलांगे पाए बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे अज भी भाई काम मिलेगा ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन ए कोई फरिश्ते नहीं ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं ते जदों वेखद्यां वेखद्यां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया कहन लगा तू मजदूर नहीं है ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको कुछ सिख लंघ रहे सन उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने ते झट चरना ते मथा टेकिया गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ सानू चंगे राह लाओ ते आप इस भेस विच खड़े हो ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ।

0: टेक है क्या गुण तेरे सार संभाली, शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है, कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

लाइन दा मतलब तज सकल दुहकृत दुर्मति, अपने सारे ही बुरे काम नु छड़ के, दुर्मति बुरी मत नु छड़ के, पज चक्र धर वाहिगुरु जी कोल, वाहिगुरु जी दी

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती थी, नीचे होते चले गए।